0: I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया.
1: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. जो होना था वो हो गया. अब आप मेरे साथ हैं. अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती.
0: तुम आखिरी बार सीरियस कब हुए थे?
1: अभी तक तो कभी नहीं, और आगे भी अगर होऊंगा तो सिर्फ एक ही बार सीरियस होऊंगा.
0: कब?
1: जब किसी से प्यार हो जाएगा.
0: कैसी लड़की चाहिए तुम्हें?
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
0: Oh, sweet.
1: अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगता है जैसे कोई अनदेखा अनजाना चेहरा बादलों में से पुकार रहा है. मुझे तुमसे प्यार हो गया है. आई लव यू सिमरन.
0: मैं एक बार फिर ट्रेन छोड़ना नहीं चाहती.
1: पर मैं चाहता हूं ये ट्रेन बार बार छूटे.
0: क्या?
1: कुछ नहीं. राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी. पलट.

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

पांच बार बोल चुके हैं, मेरे को तो लगता है कि आप टूटोगे, आप फूलोगे, आपका लीवर सड़ जाएगा। ये भाई मैं पिंकी में हूँ, क्यों एक्चुअली आ रही सपना इधर देखो। हाँ सपना इधर, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है।

0: बोलो ना।
1: अरे तू है मेरे भाई, अरे तू है भाई तू।
0: ओके आई नो ब्रदर, आई नो थैंक यू। ओके भाई मैं जरा शराब निकाल के आता हूँ, आप कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे तो मेरे को घर को लेके जाएगा। क्या जा जा।